0: पाए।
1: देखा, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है। क्यों भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूं ना?
2: पकड़ लो।
1: नहीं,
0: आपकी तारीफ।
2: भाई यही तो है, वकील साहब। ओ
0: अच्छा अच्छा, जो यहाँ का हिसाब किताब देखते हैं भाई। बहुत अच्छा देखते हैं तुम, बहुत अच्छा देखते हैं।

0: सिकंदर को खत्म करने का एक अच्छा आइडिया है।
1: सोडा या पानी?
0: सोडा।
1: सोडा।
0: पानी पानी।

0: प्यारेलाल जी, प्यारेलाल जी,
1: प्यारेलाल,
0: प्यारेलाल जी कहाँ हो भाई?
2: अमा
0: वहाँ क्या कर रहे हो?
3: हाँ चलो, अबे आगे से आ, आगे से। हाँ अच्छा आप भी हैं? अरे कौन है? फुट

0: बात मत रख, प्याला मेरा परदेसा की।
1: बातिशी बेटा बातिशी।
0: सुबह और शाम से गाफिल मुझे कर दे साकी।
2: छी छी छी छी।